0: गोइला येनो
1: कानुंग रोस माय मेकिंग
2: ये मस्या छ्या ममु छ्या मस्या लु ममु लु मस्या मिने ममु
0: न्यंगी रिमथिम डिंगी जो थन लबे लागिरी न्यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को केरसे के हुसनी है।

ख्याजलो जो कार्यक्रम आदिवासी संसार बीच अर्क नया श्रृंखला स्वागत म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतिभा तमस्यो चुतेरी क्यों थिप्दी म रेडियो ढुर्राई क्रिप्रो छु दशमलव प्रेमिका हर्ष श्रोतमय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी नगर समन्वय परिषद आदिवासी समुदाय बे भाषा संस्कार संस्कृति बे जगेर्ना निवे प्रबोधन लबा उद्देश्य किरा सहयोग ललै रखबा चु कार्यक्रम क्युमे प्रत्येक हप्ता बे सोमबार नागरी को निचु बजेसिरी चुरान सम्म थेलखाम भिस पुनः प्रसारण पन मंगलबार नेसर बे गाही चु बजेसिरी चुरान सम्म थेलखामु विशेष रे तमु समुदाय बे भेषभूषा रहन सहन तमुकै पेता लुतानी बे तमु मेल बे छ्यामेल बे अवस्था बारे जानकारी पीबा प्रसारी उत्पादन ललै रखबा चु कार्यक्रम चौतालाई खंगामु कार्यक्रम थे सारी फोन कमेन्ट निबे हृदय रना प्रतिक्रिया तिर न्यूलाई सहयोग लमिबा मु बिबा आशा निबे अपेक्षा निला दिमु न्यूलाई क्युले रेडियो ढुर्ब्राई ला वेबसाइट निबे न्यूला पात्रो मोबाइल एप नि पपरे फेसबुक पेज सारी ना विश्व तिकुरी खेल खामु श्रोतमय कार्यक्रम आदिवासी संसार बी चुभन्दा नसुर बी श्रृंखला र क्युमे नसु छ्याब छ्याब तमु कुइमै खेल्दै र मनोरञ्जन पिबा जमरको गैलला विषया तिया बी श्रृंखलारी कोला निबे लमा सभ्यता आधारित तमुमै बारेरी तानन्तान लबा प्रयास गैलबा मु तोगोबे अध्ययन अनुसार तमुमै कोलो सभ्यतारी आधारित मुरमु मनोयुलबी नार्फु गालब खंगसार टंकीनासा ग्यारोङ तिमाङ कोल्तु लगायत बे भूगोलमै र आदिम बसाइ तुगुला मानव जत्था हुलमै छोडा क्रबचिब मुखियाला नेतृत्व र विभिन्न दिशाले बसाइ सरी र प्रभा मुरुमु रिल्दी खले लेम क्रो निबे कुगीमै मार शुभा मस्याङदी पश्चिमपाट तर्फाइले बढ्दी बढ्दी लेन स्थानला प्राचीन बसाइ ल्याएकोला सुथर फेखबा मुरमु भिस्या साम्री खले क्याल्दु खले डाँगी खले निबे लमामै भिस्या मर्स्याङदी पूर्व पातुरी फैरिया बमरमु लमामैला दफर अर्थात वंशावली ल तोप्रष्ट लम्बिस्या सुसमै देदिन मर्स्याङदी पश्चिमला भूगोल प्रभा मोलेना चेकले लिबी पोजो फिपो ततैरा फेरि मर्स्याङदी पूर्व पाटो रैन फैली बामरमु तोगोबे नासाठो बस्ती मैला भौगोलिक अवस्था प्रस्त रूप छुइन मृलामु कोला सभ्यता र आधारित समूह मैला ले नासा बस्तीमै कोबा अवस्था र न्युमु विषया लमा सभ्यता र आधारित बस्तीमै शुद्ध रूप र छोले मात्र बस्ती लमा सामरी क्याल्दो निबे डागी घले मैला छुट्टै बस्ती न्युमु तोगोबे अवस्था र ले चिगुदी अरू समुदाय न कोबा अवस्था मुरुलिन कालान्तर र सामाजिक निवे सांस्कृतिक सम्बन्धला विकासै क्रम र बसाइ सरैखबा कोमु चक्रमरी मर्स्याङदी पूर्वी पाटोतर्फ प्रभा उगीमै र छोडा मात्र शुद्ध बस्ती मुरमु हजुर श्रोतमै चु तालन्द नै श्रोतमै चुक्योला निवे लामा सभ्यताल बेबारेरी तानन तालन्द नै कृष्ण बकोई क्युमै नसुथे र त्यस्या मनोरञ्जन किल्याउदी कोइला बोलामो एङुर्स्यो सोर मनोज तमुनि बेतारा श्रीसला मोभिस्या शब्द मो आशा तमुला

就大人比你们人听好啦可能爱惜आदिवासी जनजाति महासंघ सुगलागन लगी नाव समन्वय परिषद ने भाई सुगलागन लगी नगर पालिका भी सहयोग करी बंदी बा चु कार्यक्रम आदिवासी संसार थेम दे लमिन ओ विवाह अनुदर लम दे फेरी नंगो कोलानी बेला मसबेताल बेबारे भी चिगु दे तानंता लले त्यां पुना विस्तृत मुरली ना च क्रिया अब बात मात्र मो मर्सियंग दी पूर्वी पाटोरी लैदी बा तमु मेला सामाजिक संस्कार मूल रूपरी लमा र आधारित नियमु चिकुती रूप मात्र क्याब्रे पचुरा आधारित मुरमु विदिन कोला सभ्यता र आधारित मर्स्याङ दि पश्चिम पाटवाईले लैदिमाईले तमु मेरा सामाजिक संस्कार मूल रूप घ्याब्रे पचुरा आधारित मुरुलिन लेम कोमै विषया ले जसो लमारा आधारित मुरमु चुला मूल कारण कोला भन्दैन नसुल बे अवस्था र मुरुमु छ तमैले लमामै मूल सम्बन्ध निभे कोजो खैसेरी लामामै पपरी सामाजिक सम्बन्ध मुबा मुरुमु कोला सभ्यता अन्तर्गत तमुमै लमजुङ हिउला पिसी कास्की पर्वत स्याङ्जा तनौ खैसेरी पश्चिमाइले लैदिबा लामामै हिउलमा तसी पाचु क्याब्री क्योतु तैना चलाई क्योला सभ्यताला प्रभाव मारिल खामु चुला मूल प्रभाव लमजुङ बाइकला पश्चिमाइबे पुरातनवादी लमामै पछु बिना तोइन सिके सोके लाल आखा तर लमजुङ रे मोबा लमामै च्यो लमा हो उत्तर दिशा न खबा तिनै छोले विधि ज्ञान निबे ससर निपुण ततसी तान सिके क्याब्रे पछु आरेलिना ख्याफे लमु कोला सभ्यता अन्तर्गत तमुला खेमार छो तिनोरे सोल्न वर्गला विकास तसी कार्य विभाजन लाभा मुरमु तोकोबे अवस्था र सुई जातीय किबा आरेला रिल्दी खाले वन जंगल प्राकृतिक स्रोत साधना र हैकम जमिदी बा मुरमु भिसा लेम क्रोमै रिल्दी भएकोला तान बे नासा बस्ती समूह र राउटेला मुखिया मैदोले नेतृत्व दायक भूमिका क्योसी तान नासर बे करबा मुखियाला भूमिका क्योबा मुरमु प्रचलनलाई नयाँ कास्किर बे नासाटोरी जीवैना बिबलमु त्यहाँ बे तेस्रो समय चतान बे बिचारी सामाजिक सहयोग सहयोगला भूमिका क्योबा मुरमु चु केवल वर्ग र आधारित विभाजन मुला पिता रुता ला तामै दस्तावेज रूपल बाहिर खाउ तमैले खेमा प्रिभा पुस्तामैलाई अन्यलाले भुमरिल रालाबा मुरमु कोला सभ्यता अनुसार नेतृत्वदायी भूमिका क्युबा लेम क्रो मुखियामै दरबारी प्रथा दुले छोला थेबा चलाई मुखिया निबे अरूमैलाई ठागु निबे थेबा चमीलाई माया नि अरूमैलाई नानी बिसी छ चमी न्योबा क्रमलाई न अरूलाई भन्दा फरक मुर्बा प्रथा तिल्लै यो त मुमैला संस्कार संस्कृति प्रथा अनुसन्धान लमाइले योलाई बिन्दी छ्याब घामु हजुर श्रोतामै त्यहाँबे श्रृङ्खला यो मैलाई खाइमो प्रतिक्रिया पिबर आपिमिन औ लोदी मेरो छेबामै आगुमै क्यो नि पपरे टिर त मुमैल बे संस्कार संस्कृति बेबारेरी तानन्ता लल्लालाई कार्यक्रम आदिवासी संसार ल निर्धारित समय त्यहाँबे लागि खालमै मु कार्यक्रमै ला अन्तिमरी फेरि ना क्रिया छ्याब कोइलम मिछ्याब कोइलम सोच्याब विवा मनोज तमुला शब्द बन्दीबा सुभाष तमुनिबे उषा तमुला सोरर मुबा चुछ्याब कोइ क्यु महिना सुथेम्दै ङ कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदीप तमुसु फेरि खप हप्तारे नै यो तम समुदाय बे रीति रिवाज संस्कार संस्कृति बारे जानकारी कि र कार्यक्रम खबै न म विवा बाचसहित विदा तमु रेडियो ढुलब्राई कृप्रसु दशमलव प्रेमिक हर्ष खेम्दै लमेदु ग्यासजी छ्याजलु

0: युअर सिंगापुर फेन्सी एन्ड ज्वेलर शप मुक्तिनाथ बैंकको एक घर माथि दुलेगौड़ा प्रोपाइटर आरएन कुमार श्रेष्ठ मोबाइल 9821484264 र 9811453005
1: दिस इज रेडियो ढोरबाराही 102.8 मेगाहर्ज
2: 103.8 मेगाहर्ज प्रेजेंट एभ्रीडे 10:30 AM टु 12 PM
3: It's time for a calling time.
2: Only on Radio Dholbarahi.

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560220079।
1: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: संयोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।
2: वेट फॉर इट।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो तान्छेन अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 93001

0: 103 थोपलो 8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टूडियो टाइमचेक
2: अहिले राति को 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल धुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो साइन अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: माइक्रो छुट छ नि।
1: ए हो र, यस्तो सुविधा पनि आइसक्यो ल, जाम जाम।
2: हजुर, माइक्रोको सुविधाका लागि सम्पर्क काठमाडौँमा होटल टाइटनिक प्रोप्राइटर रामचन्द्र महत 98461168 र दुलेगौंडा ढोरफिर्दी छाब्दी देउराली साखी हुँदै मग्याम चिसा पानीका लागि संयोग कटेज लज एण्ड रेस्टुरेन्ट प्रोप्राइटर हरिचन्द्र महत 98235526363।
3: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस न्युरोड पोखरामा अब सबै प्रकारका उपचार सेवा सम्भव छ।
4: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाचन, प्राध्यापक डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
3: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्माया पुन,
4: फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी, डाक्टर शंकर बराल,
3: हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, उप प्राध्यापक डाक्टर पविन थापा र हाड जोड्नी नसा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ,
4: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन,
3: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री, डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ,
4: नाक कान घाँटी तथा थाइरोइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ, छाला विज्ञान भेनेरोलोजी र कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले,
3: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ,
4: एन्थेरियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, प्लास्टिक एण्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पियुष गिरी,
3: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर साल गुरुङ, डाक्टर सुस्मिता गुरुङ,
4: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
3: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडियल र मनोचिकित्सक डाक्टर मनकाजी थापा मगर।
5: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलिसिस सेवा र 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
6: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली पोखरा 9 न्युरो, फोन 061-590-162-590-163।
7: फुकै खाए साह्रै मिठो, पकाए त स्वाक्कै, एक पाकेटले पेट भरि नि के हो भने अपक्कै।
8: यो हो बोनस चाउचाउ।